0: ये है लाइका रेडियो सी टीवी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9-12 July इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
0: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Available in all iOS and Android stores. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: Network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना

ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

हत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख लख

जोर जोर ना जीवन मरण न जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पका।

0: Breakfast with Deep Roger.
1: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है.
2: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
3: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
2: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2, now in cinemas.
4: दुल्हन के लिए मेकअप.
2: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
5: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026. 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956-154-846.
6: जी टीवी एच डी पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में.
7: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है.
8: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय.
9: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर.
10: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है.
9: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में.
6: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे जी टीवी एच डी पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
11: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
12: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the...
14: Coast Guard, help!
13: Okay, help's on its way.
15: Grab my hand!
13: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
16: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
17: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
17: दिल तो टूट पे किया.
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
18: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियां हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394.

0: है Like a Radio.
1: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
2: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
1: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 g 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 799 g 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश
2: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
1: Big deals, big savings, while stocks last.
3: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
4: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
5: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
4: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2, now in cinemas.
6: दुल्हन के लिए मेकअप.
4: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale Scottish Highlands, Snowdonia ke afsanvi landscapes aur stunning coast of Cornwall ko explore kijiye. Aapka safar hoga majestic Swiss Alps se lekar romantic Paris aur timeless beauty of Italy ke through.
13: Visit Mantra Holidays .co.uk or call 020-3773-6333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में.
15: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है.
16: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
17: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर.
18: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है.
17: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में.
14: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
19: LemFi means quicker and safe way to send money.
20: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
19: LemFi means £10 sign up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKEUS.
20: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
21: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
14: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
22: जगदात्री,
14: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
22: माला ले आना, लाया जी.
14: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है.
23: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन.
14: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री. देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
24: Punjab, the biggest tunes, non-stop.

0: लता जी की आवाज में आप सभी का फेवरेट गाना फिल्म बाजार से लिया था, जिसमें खयाम साहब का म्यूजिक था। उससे पहले सभी का फेवरेट गाना, सभी की फेवरेट आवाज जो है मोहम्मद रफी साहब की आवाज, और फिल्म का नाम लोफर जो 1973 में आई थी। और लीजिए, दो आपके फेवरेट गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। ये है आप सभी का मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर लाइका गोल्ड आप सुन रहे हैं ग्रेटर लंदन में, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और मुझे कहते हैं ऋतु शर्मा। अब से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आपके साथ रहूंगी, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल मजे में होंगे और पूरा हफ्ता खूब मजे के साथ बिताया होगा, और आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा बीते, ऐसी ही मेरी उम्मीद है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आज भी प्रोग्राम में वो सब कुछ होगा जो हमेशा होता है, और क्या होगा वो मैं बताती रहूंगी, लेकिन आज एक कंपटीशन भी होगा। जी हाँ, एक कंपटीशन भी होगा, और आपको कुछ जीतने का मौका भी मिलेगा, और वो क्या है वो भी बताऊंगी, थोड़ा सब्र करो। लेकिन पहले
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज ये 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इसके अलावा आपको याद दिला दें कि जून के पहले पहले अगर आप कुछ जीतना चाहते हैं तो आप जीत सकते हैं 75 pounds का वाउचर, जब आप एवरीडे जीत सकते हैं जब आप ट्रांसफर करते हैं 1000 pounds से ज्यादा, या फिर 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आज जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें मैच होने जा रहा है, पहले तो नेदरलैंड्स और स्वीडन का जो ग्रुप एफ में आते हैं, और उसके बाद ग्रुप ई का मैच होगा जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच में। और आपको बता दें कि ये स्पॉन्सर किए हैं रैकलो ने, और अगर आप रैकलो से कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस आपको मिल सकती है जब आप मेंशन करते हैं लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश
4: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
4: 105 shows pura karya pachi, have Lester ma avi rahyu chhe, ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
5: Jay's Entertainment, line avi rahya chhe, sakhna re jo husband ji.
4: Leena Shah, ane Samir Shah saate, haasyano full dose. 28 June, People Center, Lester ma, be shandar shows, bapore adi vage, ane sanje 7 vage. Tickets booking mate, call karo Mr. B07860-280655, Mumbai Sandwich Station 07834832249, athwa eventbrite.co.uk. Sakhna rejo, husband ji.
6: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhundne se lekar incredible themes design karne tak. World class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foreign ka phone milaye 0208839080 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering. Ragasan.
7: Celebrate Father's Day on Sunday 21st. 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
8: Welcome to the jungle.
3: Film bilkul fake.
8: Hamari film army wali.
9: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
8: स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
8: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
10: किस लिए फिल्म में.
7: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Nun Eaton, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
13: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
14: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. Imagine X Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
13: You know how fans shout at football matches?
15: Oh, wake up!
13: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
16: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24-7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यस, जसविंदर नरूला और सोनू निगम की आवाजों में था ये गाना फिल्म सोल्जर से, जिसने बॉबी देओल की जो लव बॉय वाली इमेज थी उसको खत्म करके एक एक्शन स्टार की इमेज बना दी थी इस फिल्म सोल्जर में। और उनके साथ थी प्रीटी जिंटा। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी और इसके गाने काफी पसंद किए गए थे, जिसमें म्यूजिक था अनु मलिक का और साथ में थे सुरेंद्र सोढ़ी, और सुरेंद्र सोढ़ी जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आप आपका मन पसंद रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं। एक बार फिर से बता दूं कि ये है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां पर ऋतु शर्मा है आपके साथ अब से लेकर दोपहर के एक बजे तक, और आपके ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। तो चलिए क्या करें, डाल ली जाए एक नजर उन पर। जी हाँ बिल्कुल, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आपको बताते चलें कि आज जो मैसेज हमें सबसे पहले भिजवाया है हमारे रेगुलर लिसनर विजय गुडोरी जी ने, और आज भी आपने बड़ी ही अच्छी सी आज का विचार हमारे साथ शेयर किया है। कहते हैं, भरोसा उन पर करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सकें, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। बहुत सुंदर थॉट, थैंक यू। और चलिए इसी खूबसूरत थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। मनीषा शाह आप हमारे साथ हैं। शेखर जी कहते हैं, मुझे शेखर आनंद कहते हैं और मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। क्या बात है, थैंक यू साथ देने के लिए, थैंक यू मिस्टर शेख। नरेंद्र भागिया जी आपने भी कुछ कहा है, और आपने कहा है कि कहते हैं, क्या कहते हैं कि यादों का शहर ना, यादों के शहर, यादों के सहारे ऋतु, यादों के सहारे दुनिया नहीं चलती, बिना किसी शायर के महफिल नहीं बनती। एक बार पुकारो तो सही दोस्तों, क्योंकि दोस्तों के बिना ये धड़कन नहीं चलती। क्या बात है नरेंद्र जी, स्वागत है आपका भी इस शो में। रिक स्टार रिकिन आज हमारे साथ जुड़े हैं। रिकिन जी कहाँ थे, इतने दिनों बाद आपका मैसेज आया है, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू भारत गंगाराम जी, थैंक यू मालती जी कहती है, मुझे हमेशा ही आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप ये कहती हैं, स्वागत है। थैंक यू अर्जुन जी, प्रीति बेल्जियम से हमारे साथ हैं। पुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, और शुरू के दो गाने सुनकर आपको आपकी मम की याद आ गई। तो होता है कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी कुछ यादें जुड़ी रहती हैं। आप हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू भाइयों। मोहम्मद अयूब चौहान जी, थैंक यू फारूक मोहम्मद जी, कैंट से सलमा जी, मुकेश पटेल जी कहते हैं मौसम आज बहुत शानदार है, बेईमान तो नहीं है। अब देखिए कुछ लोगों को ये शानदार मौसम ही थोड़ा बेईमान लगता है। लेकिन गाना बहुत सुंदर था, आपने एंजॉय किया, सो थैंक यू। थैंक यू महेंद्र बजारिया जी, प्रज्ञा जी कहती हैं आपका इंतजार है, थैंक यू। वियाना सुन से अनिल सोनी जी सुन रहे हैं, निर्मला हमारे साथ हैं, हंसा वोरा, जासू जी, संध्या वासर, तोची जी, संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी आपने भी लिखा है कि वर्ल्ड कप के जुनून में एक छोटा सा विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, और इसे लिखा है कि मेहनत करो और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहो। बिल्कुल सही कहा है। वैसे ये फुटबॉल के खिलाड़ी डेढ़ घंटे तक ही ना कितना दौड़ते रहते हैं, और एक गोल मिलता है तो वाकई में खुशी होती है, और आजकल मैचेस चल रहे हैं, मजा आ रहा है देखने में। महेंद्र पटेल जी थैंक यू, योगेंद्र जैन जी, सुमन बद्रेसा, ज्योति जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपने इतनी मेहनत करके मुझे इतने प्यारे मैसेजेस भिजवाए, तो ये अगला गीत बिल्कुल आपके लिए बनता है मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लीजिए मुकेश की आवाज में ये गाना मेरी ओर से आप सभी के नाम पर जाता है और जिन सभी का भी ये फेवरेट गाना है। सहर जी हमारे विजय गुनोवा जी बैटरसी में सुन रहे हैं, हमारे गिरीश जी भारत में सुन रहे हैं, कहते हैं सैटरडे का तो बेसब्री से मुझे इंतजार रहता है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, फरीदा गुलाम अली जी थैंक यू, दिनेश पोपट जी बहुत धन्यवाद। और आपको याद दिला दें कि ऐसे ही बहुत सारे गाने आज आपको सुनवाने वाली हूँ प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जिसे हम कहते हैं यादें। और उसका कारण ये है कि आज की यादें में हम शम्मी कपूर को याद करने वाले हैं। शम्मी कपूर के बहुत सारे फैंस हैं हमारे यहाँ, तो आप सब तैयार रहिए प्रोग्राम के अगले हिस्से में उनके बारे में, उनसे जुड़ी कुछ कहानी किससे सुनाऊंगी और उनकी फिल्मों के गाने भी सुनाऊंगी।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: लेकिन ये भी याद दिला दे कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में कंपटीशन भी होने जा रहा है और ये कंपटीशन क्या है ध्यान से सुनिए। लाइका रेडियो नेटवर्क जेज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर आपको मौका देने जा रहे हैं जीतने का दो टिकट्स गुजराती स्टेज कॉमेडी शो के, जिसका नाम है सखना रेजो हस्बैंड जी। ये है नाटक का स्टेज का जो कॉमेडी स्टेज शो का नाम, और इसमें लीना शाह और समीर शाह ने काम किया है। ये फ्राइडे 26 जून को होगा 27 पाटीदार समाज वेम्बली लंदन में, और आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये टिकट सिर्फ लंदन शो के लिए है क्योंकि ये शो और भी कहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको हम सिर्फ लंदन शो वाले टिकट्स देंगे। इसलिए प्रोग्राम का अगला हिस्सा ध्यान से सुनते रहिए।
1: ये है लाइका रेडियो across the Leica Radio Network. This is Ritu Sharma. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रेवल से बेटर और क्या, विजिट कीजिए साउथ हॉल ट्रेवल और उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर, और उनके साथ न सिर्फ टिकट्स बल्कि पूरी डील इंक्लूडिंग फ्लाइट्स होटल सब कुछ बुक करा सकते हैं। एट ऑल प्रोटेक्टेड है, 40 साल से आपका साथ दे रहे हैं और ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड भी जीत चुके हैं, तो याद रखिये साउथ हॉल ट्रेवल।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ritu Sharma. Leica Radio. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
2: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HAMARIRAM10 for a 10% discount on all shows and tickets.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2020. 26. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply. जी टीवी HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
8: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
9: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
10: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर?
11: वृंदा, तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
10: 3 मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
12: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
13: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना। मंत्रा हॉलीडेज, कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 02039 63 5757. Greens by Daniel, prime location,
14: high appreciation
15: in Dubai.
16: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
17: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
16: Jaimin Foods desi cravings, available at nearest ethnic grocery stores.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
18: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety. It's on all of us. National Highways.
19: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
20: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
1: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
21: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands, and Manchester.

शम्मी कपूर के गाने एक से बढ़कर एक हैं जिन्हें आज आप इस प्रोग्राम में सुनेंगे। कुछ गाने मैंने चूज किए हैं और बड़ा डिफिकल्ट था कि कौन से गाने छोड़ दूं और कौन से गाने बजा दूं, लेकिन देखते हैं आज कौन से गीत आप की पसंद के इस प्रोग्राम में बज पाते हैं। लेकिन आज हम

0: शमी कपूर साहब को याद कर रहे हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि कभी उन्हें जानवर कहा गया, कभी उन्हें जंगली कहा गया, लेकिन जब लोगों ने उनका काम देखा तो उनके दिल से एक ही आवाज निकली, शमी तुम सा नहीं देखा। और देखिए, इसीलिए तो आज के जमाने में भी शमी कपूर साहब के इतने सारे फैंस हैं। ये मुझे आपके मैसेजेस बता रहे हैं और आपको लग रहा है कि आज की यादें इस सैटरडे की बेस्ट यादें होंगी, हमारे विजय जी का कहना है। तो चलिए उनसे जुड़े किस्सों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि हिंदी सिनेमा के एल्विस प्रेस्ली कहे जाते हैं शमी कपूर साहब, और उस जमाने के बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक एक अलग ही डांसिंग स्टार थे, और ये अंदाज लोगों को उनका तब भी पसंद था और आज भी पसंद है। वैसे तो उनका जन्मदिन अक्टूबर में आता है और हम सब जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं, राज कपूर के छोटे भाई हैं, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1953 में की थी, जो इनकी फिल्म थी जीवन ज्योति। लेकिन शुरुआत की 15-16 फिल्में थी या 10-12 फिल्में थी, जितनी भी फिल्मों में इन्होंने काम किया, फिल्में चली नहीं, सफल नहीं रही। और फिर इनकी फिल्म आई 1957 में तुम सा नहीं देखा, 2 साल बाद दिल दे के देखो, और इन दोनों फिल्मों में शम्मी कपूर का अंदाज अपनी पुरानी फिल्मों से बिल्कुल अलग था, और इन फिल्मों में एक चुलबुले रोमांटिक हीरो की तरह नजर आए थे शम्मी कपूर, और उनके स्टाइल को लोगों ने इतना पसंद किया कि उसके बाद ये स्टाइल तो उनका स्टाइल ही बन गया, और उसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया जिसके एक से बढ़कर एक गाने हैं। एक करके फिल्म आई थी जंगली, जिसने इन्हें सुपरस्टार बना दिया, और इस जंगली फिल्म से जुड़ा हुआ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी है जिसे मैं आपको जरूर सुनाऊंगी अब से बस थोड़ी देर में, लेकिन पहले जंगली का गीत सुनाती हूँ, वो भी बजेगा अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app। और आपको बताते चलें कि 75 pounds का वाउचर एवरीडे आप जीत सकते हैं जब आप 1000 pounds से ज्यादा मनी ट्रांसफर करवाते हैं, या फिर गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our radio.
3: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आपको बता दें कि आज नेदरलैंड्स और स्वीडन की टीम्स के बीच में फीफा वर्ल्ड कप का मैच होगा, और ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट की टीम्स खेलेंगी। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि आप रैक लॉ सॉलिसिटर से 15 मिनट का फ्री कंसल्टेशन, फ्री एडवाइस ले सकते हैं जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
5: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
4: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
5: Also explore 2026 cruises
4: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
6: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at visitambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
1: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan. और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम
4: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट
1: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो
7: सुरिंडरेला इज बैक फॉर 2026 बेक थिएटर हेज 22nd एंड 23rd ऑफ जुलाई आर्ट्स डेपो बार्नेट 17th एंड 18th ऑफ अक्टूबर थिएटर वॉल स्ट्रैटफोर्ड ईस्ट 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click riffgotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywoods. Radio partner Leica Radio.
8: Maharaja Tours la rahe hain Captivating China 2026. Shanghai, Beijing, Xi'an aur Chengdu ka unforgettable safar. Great Wall, Terracotta Warriors, high-speed trains aur adorable pandas. Flights, hotels, Indian khana aur guided tours sab included. From £3,299 per person, visit maharajatours.co.uk ya Call 07956154846.
9: Welcome to the jungle.
10: Film bilkul fake.
9: Hamare film army wali.
11: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
10: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो
9: और स्टार कास्ट है
10: अक्षय कुमार सुनील शेट्टी अर्षद वारसी परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास
12: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था
10: क्या वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून
12: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
13: किस लिए फिल्म में
14: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
15: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
14: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
16: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
17: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
18: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यस, जंगली फिल्म से था ये गाना जिसे आप में से बहुत सारे साथी सुनना चाहते थे. तो चलिए, ये गाना जिन्हें पसंद है मैंने ये उन सभी के नाम पर किया. लेकिन इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा जरूर सुनवाऊंगी कि जब इस फिल्म के सबसे एनर्जेटिक सबसे पॉपुलर गाने की शूटिंग हो रही थी, आपको याद ही होगा गाना याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे. यस, ये गाना कितना एनर्जेटिक है और इस गाने में जो गजब का डांस है, जो एनर्जी दिखती है, उसके पीछे कोई कोरियोग्राफर नहीं था. अक्सर ही शम्मी कपूर के जो गाने थे उनके लिए कभी कोई कोरियोग्राफर नहीं होता था, वो अपने गानों के स्टेप्स खुद ही डिजाइन करते थे. और ये गाने के साथ भी ऐसा ही हुआ. जब इस गाने की शूटिंग श्रीनगर की बर्फीली वादियों में हो रही थी, तो इस गाने को सुनकर और उन वादियों को देखकर शम्मी कपूर इतने जोश में आ गए कि उन्होंने बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से नीचे की तरफ बार बार फिसलना शुरू कर दिया और वो पूरी तरह से जंगली हो गए थे, या कहूँ इस गाने के मूड में डूब चुके थे. और बार बार ऊपर जाते फिर फिसल कर नीचे आते, बार बार ऊपर जाते फिर फिसल कर नीचे जाते, और वो इतनी जोर से बार बार ये काम कर रहे थे कि ऐसा करने से जब वो रीढ़ के बल फिसल रहे थे शूटिंग के दौरान, उन्हें मालूम पड़ा कि उनके घुटने की हड्डी खिसक गई है और पीठ में गंभीर चोट आई है. कमाल की बात यह है कि दर्द के बावजूद उन्होंने शॉट पूरा किया. और देखिए, गाना आज भी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कहूँ या कहूँ यादगार गाना तो गलत नहीं होगा, माना जाता है. और ये भी हम सब जानते हैं कि इस गाने में प्रयागराज ने पीछे से आवाज में गाया था याहू. लेकिन अब ये गाना तो मैं नहीं सुनवाने वाली हूँ क्योंकि इस फिल्म का एक गीत सुनवा चुकी हूँ. लेकिन एक और बहुत ही मजेदार सा गीत आने वाला है आप सबके लिए. और उस गीत को बजाने से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूं, कंपटीशन भी तो है. तैयार हैं? चलिए पहले बात कर लेते हैं आज के कंपटीशन.
1: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM लाइक अ गॉड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स.
0: तो शम्मी कपूर के गीतों को एंजॉय करते करते चलिए कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर लीजिए. लाइक अ रेडियो नेटवर्क आपके जेएस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर आपको मौका देना जा रहे हैं 2 टिकट जीतने का एक गुजराती कॉमेडी शो का, जिसका नाम है सखना रेजो हस्बैंड जी, जिसमें लीना शाह और समीर शाह ने काम किया है. ये 26 जून फ्राइडे को होगा एट 27 पाटीदार समाज वैमली लंदन में. और आपको बता दें कि ये जो टिकट्स हैं ये लंदन शो के लिए ही हैं. अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको हस्बैंड लिखना होगा और हस्बैंड के साथ साथ क्या लिखना होगा, अपना नाम लिख दीजिए, अपना टेलीफोन नंबर और अपना ईमेल आईडी भी लिख दीजिए. ठीक है, तो आपको जो भी प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में बैक टू बैक गानों के बाद मैं विनर का नाम अनाउंस करूंगी और जो भी विनर होंगे वो इस शो को देखने के लिए जाएंगे. और टिकट्स आपको कलेक्ट करने होंगे वेन्यू रिसेप्शन से जिस दिन शो है उसी दिन शाम को जाकर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. तो फटाफट हस्बैंड लिख लिए, अपना नाम लिखिए, अपना टेलीफोन नंबर लिखिए और अपना ईमेल एड्रेस लिखकर हमें भेज दीजिए फटाफट.
2: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और आपको याद दिला दूं कि ये गुजराती प्ले है, तो अगर आप गुजराती बोलते या समझते हैं तभी जाइए तो फायदा है, नहीं तो मेरे जैसा कोई इंसान पहुंच गया तो फिर जोक समझ में नहीं आएंगे तो मजा नहीं है. इसलिए अगर आप गुजराती बोलते समझते हैं तभी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कीजिए.
2: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: आशा जी और रफी साहब की आवाज में शम्मी कपूर की सुपरहिट फिल्म तुम सा नहीं देखा से था ये गाना। और तुम सा नहीं देखा शायद शम्मी कपूर साहब ने कहा होगा जब उन्होंने गीता बाली को देखा होगा। आप जानते हैं कि गीता बाली उनकी पत्नी थी और गीता बाली से बहुत प्यार कर बैठे थे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर जब फिल्मों में आए थे तो उनकी शुरुआत की कुछ फिल्में सुपर फ्लॉप रही थीं, लेकिन गीता बाली की फिल्में सुपर हिट थीं और गीता बाली उस समय एक बड़ी स्टार भी बन चुकी थी। लेकिन शम्मी कपूर तो उन्हें दिल दे बैठे थे और उनके पीछे ही पड़ गए थे। और देखिए, इतनी बड़ी हीरोइन उस जमाने की टॉप स्टार थी गीता बाली, लेकिन शम्मी कपूर एक फ्लॉप एक्टर थे। फिर भी जब शम्मी कपूर ने उनसे शादी के लिए बात की तो गीता बाली ने उनसे हाँ कह दिया। बड़े ही गुपचुप तरीके से शादी हुई। शम्मी कपूर कितने खुश होंगे, लेकिन आप जानते हैं ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली। बहुत ही छोटी सी उम्र में गीता बाली इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी उम्र सिर्फ 35 साल की थी 35 ईयर्स की एज में जब उन्हें चिकन पॉक्स हुआ, और उस चिकन पॉक्स ने ही उनकी जान ले ली सिर्फ 35 ईयर्स की एज में। शम्मी कपूर साहब के दिल पर क्या बीती होगी कि जिसे उन्होंने इतना चाहा, लड़ झगड़ कर गुपचुप कर शादी रचाई उनका साथ बस इतने ही कम समय के लिए। लेकिन ऐसा हुआ और फिर शम्मी कपूर गीता बाली के गम में डूब गए। आज हम शम्मी कपूर साहब के ही जीवन से जुड़ी कुछ बातें, कुछ किस्से सुनवा रहे हैं। गीता बाली से उन्होंने बहुत प्रेम किया लेकिन ये साथ ज्यादा नहीं चला। एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत शम्मी कपूर की फिल्म से सुनवाने वाली हूँ अब से बस थोड़ी ही देर में। Like Extra Podcast Update। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और इसे होस्ट किया है दीप राजा ने, और इस बार का टॉपिक है साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट को आप स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन पर जाकर सुन सकते हैं। Like Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. ये है Leica Radio.
1: ફાધર સન નો બોન્ડ જેટલું સ્પેશિયલ છે એટલી જ સ્પેશિયલ ફિલ્મ આવી રહી છે.
2: અંકલ તમે પહેલાથી આવા જ છો.
3: આવા એટલે કેવા?
1: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર.
3: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તું, બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું. અરે જિંદગી એવી મોજથી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવીને પૂછે.
1: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધ ઇમોશન્સ, લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાસ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
3: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર.

0: शम्मी कपूर के गीतों की कामयाबी में मोहम्मद रफी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। और मजेदार बात थी कि शम्मी कपूर अक्सर रफी साहब के रिकॉर्डिंग्स में मौजूद नहीं रहते थे, लेकिन जब भी रफी साहब गाना गाते थे तो उन्हें ठीक ठाक पता होता था कि शम्मी कपूर इस गाने में पर्दे पर किस तरह से उछल कूद करेंगे या फिर किस तरह से हाथ पैर हिलाएंगे। और इसीलिए तो ऐसा लगता है जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ शम्मी कपूर की ही आवाज़ है, क्योंकि ज़्यादातर गाने जो सुपरहिट हैं जो सुपरहिट नहीं भी हैं उनमें आवाज़ रफ़ी साहब की ही है। आज कुछ ऐसे ही गाने मैंने आपको सुनवाए। आज हमने यादें में याद किया शम्मी कपूर को। एक और गाना सुनवाऊंगी आज की यादें का, वो होगा आखिरी गाना, बजेगा आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 124 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए and 162 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is LEICA. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is 101.05 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: LEICA Radio.
1: This is LEICA Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 1499, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 1199, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 799 ग्राम 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 Assistant Street LE12JU या Rowlatt Hill LE54UN।
3: Big deals, big savings while stocks last.
5: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410, दैट्स 8574 8410।
9: साउथ हॉल ट्रेवल all protected.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office
12: office on 020-3963-5757. Greens Bar Danube. Prime location.
10: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
1: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. New hits on Leica Radio.

0: listen to the freshest hits added daily on Leica Radio. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
1: Leica Radio.
2: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
3: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
4: खुद से भी ज्यादा।
2: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
4: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
2: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
0: Listen back to your favorite shows by logging on to leicaradio.com and selecting Midlands or the mobile app. The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

0: लीजिए आशा जी की आवाज में था ये गाना प्यार में दिल पे मार दे गोली और संध्या भावसर के दिल पे सीधे गोली लग भी चुकी है। क्या बात है ठिशकियाओ। महान फिल्म से था ये गाना जिसमें किशोर और आशा जी की आवाज है और उससे पहले आपने राजपूत फिल्म का गीत सुना जिसमें किशोर कुमार की आवाज थी। और लीजिए दो गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है और ये है लाइका रेडियो नेटवर्क जहां पर ऋतु शर्मा है आपके साथ और आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। स्वागत है लास्ट एंड फाइनल आवर में आपका। पिछले आवर में यादें सुनी आपने शमी कपूर की और उन्हें बहुत इंजॉय किया, थैंक यू सो मच। और अब बारी है थ्री वर्ड्स गेम खेलने की और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स सुनने की। लेकिन उससे पहले बताते चलूं कि प्रोग्राम के लास्ट आवर में एक कंपटीशन था जिसमें लाइका रेडियो नेटवर्क जैज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर आपको मौका दे रहे हैं जीतने का दो टिकट्स गुजराती स्टेज कॉमेडी जिसका नाम है सखना एजो हस्बैंड जी। और जिन्होंने इस कंपटीशन को जीता है उनका नाम है हरिवदन। हरिवदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिलते हैं इस कंपटीशन के दो टिकट। किसी खास के साथ देखकर आइए इस स्टेज शो को और मजे के साथ इंजॉय कीजिए, फिर हमें बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। और कल भी एक कंपटीशन है तो जिन्हें आज मौका नहीं मिला जीतने का वो निराश परेशान ना होइए, कल कोशिश कीजिए, हो सकता है कल आप बन जाए इस कंपटीशन के विनर, यू नेवर नो, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के हमारे थ्री वर्ड्स गेम वाले कॉम्पिटिशन की। कॉम्पिटिशन नहीं ऋतु, ये तो गेम है जिसे हम हर बार खेलते हैं। जी हाँ, तो चलिए बताती हूँ आपको आज के थ्री वर्ड्स गेम के थ्री वर्ड्स कौन से हैं। और ये थ्री वर्ड्स हमेशा है मैं किसी बॉलीवुड के किसी गाने से लेती हूँ और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज का जो पहला वर्ड है उसका नाम उसका वो है प्यारे, दूसरा है दुनिया, तीसरा है दिल। 1971 में आई थी ये फिल्म, आर डी बर्मन का म्यूजिक है और लता जी की आवाज है। कौन सा है ये गाना? पहला वर्ड है प्यारे, दूसरा वर्ड है दुनिया और तीसरा वर्ड है दिल। 1971 की फिल्म, आर डी बर्मन का म्यूजिक, लता जी की आवाज। जरा बताइए तो सही कौन सा है ये गाना। अपने इस हमारे इस नंबर पर अपना मैसेज भिजवा।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719.
0: एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पहला वर्ड है प्यारे, दूसरा वर्ड है दुनिया, तीसरा वर्ड है दिल। 1971 की फिल्म, आर डी बर्मन का म्यूजिक और लता जी की आवाज। कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज वन पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए। ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा SBI ब्रांच ऑनलाइन या फिर उनके योनो ऐप के थ्रू। और एंड ऑफ जून के बीच में आप 75 पाउंड्स का वाउचर जीत सकते हैं हर रोज जब आप ट्रांसफर करते हैं ओवर 1000 पाउंड्स एवरी डे, और या फिर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. ये है Leica Radio. Leica
2: Radio. कोई रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है, क्यों नया होता है?
3: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
4: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे?
5: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
3: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2, now in cinemas.
6: दुल्हन के लिए मेकअप।
3: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
7: Travel 24 hours a day, we're at our peak.
5: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there. Southall Travel, auto protected.
8: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026. 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956-154-846.
9: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.

0: जी हाँ बिल्कुल, लिखा है इन हवाओं पे, लिखा है इन घटाओं पे कि मैं हूँ तेरे लिए और तू है मेरे लिए। और ये कह रहे हैं शरफून और बलराज एक दूसरे से। शरफून जी, आपका मैसेज आया है और आपने बताया है कि आपके बिलव्ड हस्बैंड जी आज अपनी हैप्पी वाली बर्थडे मना रहे हैं, तो चलिए ये गाना आपकी ओर से बलराज जी को ही डेडिकेट करते हैं और पूरी फैमिली उन्हें बड़े ही प्यार से जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दे रही है। तो बलराज जी, हमारी ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे, और आज सैटरडे का दिन है, परिवार के साथ धूमधाम से बर्थडे मनाइए। और डर का गीत जिसे लता जी और हरिहरन ने गाया था आपको डेडिकेट करते हैं। और आपको बता दें कि हरिहरन ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक और उनका शो भी होने जा रहा है। अगर आपने टिकट्स अभी तक नहीं बुक कराई हैं तो जल्दी कीजिए। Like a radio. और आप शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाते हैं आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना जिसमें आवाज है मुकेश जी और साथ में है लता मंगेशकर।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कैसे हो।
1: प्रदीप कुमार और अनीता गुहा पर यह गीत पिक्चराइज किया गया था, जो हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना था। और आपको बता दें कि अनीता गुहा जो अपने जमाने की एक जानी मानी एक्टर रही हैं, जिन्होंने कई माइथोलॉजिकल फिल्मों में भी काम किया है, आज उनकी पुण्यतिथि है। 20 जून 2007 में जब उनकी 875 ईयर्स की थी, इस दुनिया को छोड़कर गईं। और इस फिल्म की हीरोइन जिसका नाम था संजोग, अनीता गुहा ही थी। और इस गीत को चलाकर हमने उन्हें आज याद किया।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: तो चलिए, अब समय आ गया है आज के थ्री वर्ड्स गेम वाले गीत को किन किन साथियों ने पहचाना है उनके नाम बताने का। थैंक यू विजय गुडूरी जी, शो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके अलावा उल्लास जी, शरफून, प्रीति बेल्जियम से, मनीषा शाह, नरेन पटेल, हाजरा जी, दिव्या जी हैरो से, रोशनी, करसन पिंडोरिया, तोची जी, किरण जी हैरो से, नीलेश तन्ना, आशुतोष चौबे, अर्जुन जी, रानी सोहानी, मोहम्मद अयूब चौहान, अर्जुन जी, कुकी, संध्या भावसर, गुरशरणजीत, निर्मला जी, अनुषा खोड़ा, आप सभी ने गीत को बिल्कुल सही पहचाना है। और उस गाने को मैं जरूर सुनाऊंगी, लेकिन पहले सुनवा दूं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
2: दिस इज रितु शर्मा।
4: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: पानी।
1: मुकेश जी की आवाज में ये गाना उस जमाने में भी सुपरहिट था और आज भी सुपरहिट है। जब भी ये गाना बजता है आपके ढेरों मैसेजेस आते हैं और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना जिसे आप सबने पसंद किया है। और चलिए T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है और हमारे साथ
2: Women's Cricket Updates presented by Carmel Prabhakar and brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
1: तो चलिए T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारे साथ कमल जी हैं, आइए जानते हैं उनसे। हाँ जी कमल जी बताइए।
4: हाँ जी गुड आफ्टरनून नीतू, कैसे हो? ठीक ठाक।
1: बढ़िया बढ़िया, बताइए आज क्या हो रहा है मैच?
4: बस आज तो बहुत बड़े मैचेस हो रहे हैं, आज तो इट्स अ वेरी ग्लोरियस डे, अच्छा है, वेरी सनी एंड पीपल गुड क्राउड एज वेल। सो ऑस्ट्रेलिया इज टेकिंग ऑन नेदरलैंड्स, तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर कर दिया 219 for 6 इन 20 ओवर्स और नेदरलैंड्स अभी चेस कर रहे हैं, बट मुझे लगता है ये पहुंच पड़ेंगे। एट द मोमेंट दे आर 18 for 2, 4.2 ओवर्स में, तो इट लुक्स लाइक अ डिफिकल्ट टास्क एंड ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग वेरी वेल एंड फील्डिंग वेरी वेल। तो उसके बाद फिर मैच है, दूसरा मैच है पाकिस्तान अगेंस्ट बांग्लादेश 14:30 को, दैट शुड बी अ वेरी गुड गेम, बोथ पीपल दे बोथ नीड विन। एंड देन वी गॉट द बिग वन विच इज एट 18:30 इंग्लैंड टेकिंग स्कॉटलैंड। साउंड तो करता है कि फुटबॉल का मैच, बट नहीं, इट्स डेफिनेटली T20 वुमेन का, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। तो वी विल गिव यू ऑल द अपडेट्स लेटर ऑन।
1: थैंक यू, बाय बाय।
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: तो चलिए हॉलिडे के लिए सोच रहे हैं तो एक ही नाम याद रखिए, साउथॉल ट्रैवल। उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर और हॉलिडे अपनी बुक कराइए। फ्लाइट्स, होटल्स इंक्लूडेड, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: हॉलिडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथॉल ट्रैवल, लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स, होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस, विजिट southalltravel.co.uk।
1: और अब सुनवाते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, अब से बस थोड़ी ही देर में।
2: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
5: Yeah.
6: Leica Radio. Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Packed for the trip? Gifts? Passport?
11: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
12: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
11: Simzy?
12: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
13: Plan
0: plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
13: Welcome to the jungle.
14: Film bilkul fake.
13: Hamari film army wali.
15: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
14: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
13: और स्टार कास्ट है
14: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
16: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
14: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून.
17: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
18: किस लिए फिल्म में.
19: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
20: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
19: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
21: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan Mandir na grand opening ma darshan no labh. Aap avitri યાત્રામાં જોડાઓ આપના પરિવાર સાથે જ્યાં મળશે શાંતિ, ભક્તિ અને આનંદ, અને સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂર નો આનંદ માણો. ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના મંત્રા હોલિડેઝ. કોલ કરો 0203-773-6333. મંત્રા હોલિડેઝ, વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા.
22: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
23: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
22: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
23: Or sales at leicamedia.co.uk.
24: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
25: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
24: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
26: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Basmati Rice.
1: Free Disha Rice Tasting on the 20th and the 21st of June from 10 a.m. to 5 p.m. at Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN.
0: Disha Basmati Rice.
2: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. For Anuka phone milaye 0208839 0880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering, Ragasan.
3: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
4: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
3: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
5: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ. कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
6: ये है लाइका गो.

0: Free Disha rice tasting on the 20th and the 21st of June from 10 a.m. to 5 p.m. at Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN. Disha Basmati
1: Rice. Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
3: गारंटेड.
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
3: फोन 0208574 8410.
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danu. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
7: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज. कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलिडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
8: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio, August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
9: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
10: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
11: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: Yes, this is Sheena on Laika Gold, and hope you're enjoying the music. Hope you're enjoying the awesome home. Hope you are enjoying my company, because definitely I am definitely enjoying your company. बहुत सारे ऐसे गाने आने वाले, बहुत सारी ऐसी बातें भी होने वाले. There's going to be competition, as I mentioned to you. That's also be there. Or yes, there are a lot of updates that's going on. Yes, of course, we'll be giving you updates on the FIFA and then also on Women's World Cup as well. So stay tuned. This is Sheena.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Looking at the currency update today, £1 is going to fetch you 124.95 Indian rupees, 368.06 Pakistani rupee, 441.46 Sri Lankan rupee, 162.50 Bangladeshi taka, 85.27 Afghani, 171.33 Kenyan shilling and 1.32 US dollars.
2: Laika Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Laika Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Laika Radio.
0: Gold in pounds is trading at £101.05 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Laika Radio Network, broadcasting across the Midlands.
3: Laika Radio. Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में.
10: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है.
11: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय.
12: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर.
13: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है.
12: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में.
9: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
14: जी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा.
15: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पांडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन. विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846.
16: Welcome to the jungle.
17: Film बिल्कुल fake.
16: हमारी film army वाली.
18: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
17: Danger एकदम real और survival skills zero.
16: और star cast है.
17: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
19: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने gun पकड़ा था क्या?
17: Welcome to the jungle in cinemas 26 June.
20: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं.
21: मैं किस लिए film में?
1: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
8: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Laika Radio Midlands.
1: For sponsorship inquiries, call Laika Radio on 0116 471 0697.
8: Or sales at laikamedia.co.uk.
22: ZTV HD par dekhe ek nayi kahani.
23: Hamare pati humko chhod diye.
22: Ganga, jisne apne pati ka saath kho diya.
23: Dil to toot pe kya. किया,
0: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
2: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
0: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।

0: is Leica.
1: You're logged into Leica Gold with me, Sheena. और बहुत ही खूबसूरत से इन दो गानों के साथ we have just started in the second hour of the show. And as I always say, the show that's about entertainment and more entertainment. और खूब सारा entertainment और प्यार, मोहब्बत, इश्क. बस यही तीन लफ्ज रखिए, बाकी सबको यूं as we all say in Punjabi, मिट्टी पाओ. And I just have to share with you कि मैं कल कहाँ थी. यस, कल आई वॉज रियली एंजॉइंग बिकॉज इज एन अपकमिंग मूवी कमिंग, कैरी ऑन जट्टा 4. सो ऑल द पंजाबीज आउट देयर, दे वुड डेफिनेटली नो अबाउट इट. नॉन पंजाबीज, यू नो, दे ऑल्सो नो अबाउट दिस मूवी. सो आई वॉज एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आई मेट सरगुन मेहता एंड बीनू डिलन एंड गिपी गरेवाल वॉज नॉट वेल, तो वो नहीं आ पाए. पर आई एम टेलिंग यू, आई हैड द बेस्ट टाइम. बिकॉज वो कभी कभी ये होता है ना, यू जस्ट टेक योर ऑरा विद यू, यू जस्ट टेक योर पॉजिटिविटी विद यू, बाकी जाए यू नो मिट्टी पाए. एंड येस, दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट. खूब लोग हम लोग हंसे बिकॉज दैट द मूवी इज ऑल्सो अबाउट दैट एंड इट्स रिलीजिंग ऑन 26th of June. एंड फॉरगेट अबाउट दैट, जो सबसे अच्छी मेमोरी होती है ना, जब आप सबसे अच्छे तरीके मिलते हैं एंड यू गेट द सेम रिस्पॉन्स. पर कई बार ऐसा भी होता है कि फ्यू पीपल दे गिव यू वेरी नेगेटिव वाइब्स, या तो मतलब बेसिकली कोल्ड वाइब्स मैं कहूँ. आई एम श्योर आपकी जिंदगी में बड़े सारे ऐसे लोग होंगे कि यू आर ऑलवेज मीटिंग देम विद स्माइल एंड देन यू डू नॉट गेट दैट रिस्पॉन्स. यू नो इसका सिंपल आंसर क्या है, छड्डो परे सानू की, राइट? आई एम श्योर इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे. बट अगेन एंड देन एम गोना टॉक अबाउट द बुक दैट आई एम रीडिंग, लेट देम बी. सबका मतलब यही है, सानू की. एम आई राइट और एम आई राइट? दिस इज शीना.
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: So £1 in British sterling can get you up to 124 rupees and 5 paisa. Send money to India via SBI Yono app or by branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day. Hey, hanji, har roz when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Do remember, terms and conditions do apply.

0: What a beautiful track from the movie Kurbani. Sponsored by Dairy Valley.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye hai Like a Radio.
0: एंड यस, अब टाइम आ गया है कि आप लोगों को बेसिकली थोड़ा एंजॉयमेंट करना चाहिए. यस, लाइक अ रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद जेज एंटरटेनमेंट फॉर अ चांस फॉर यू टू विन टू टिकट्स टू द गुजराती स्टेज कॉमेडी सखना रेजो हस्बैंड जी फीचरिंग लीना शाह एंड समीर शाह. सो डेफिनेटली अगर आप ये चांस जो है विन करना चाहते हैं और अपनी पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, किसी के साथ भी जाना चाहें, एंड इट्स टेकिंग प्लेस ऑन फ्राइडे द 26th ऑफ जून एट 27 पाथीदार समाज वेम्बली लंदन. आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है. सेंड द वर्ड हस्बैंड टू द स्टूडियो व्हाट्सएप राइट नाउ. यस, यू जस्ट नीड टू सेंड द नंबर राइट नाउ 0742423 23. और ये जो है बेसिकली 26 जून को होने वाला है. दीज टिकट्स आर वैलिड फॉर लंडन वेन्यू ओनली. विनर्स विल बी एबल टू कलेक्ट टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू रिसेप्शन ऑन द इवनिंग ऑफ द शो. टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई. सो सिर्फ आपको आपके हस्बैंड का कोई नाम नहीं लिखना है, कोई फोन नंबर नहीं देना है. यू जस्ट नीड टू राइट द वर्ड हस्बैंड एंड हु नोज वेदर यू आर गोइंग विद योर हस्बैंड और समवन एल्स.
1: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.

0: एंड यस, मैंने तो आपको कहा था मिर्ची खा के आइए या सोच के आइए. एंड या आई जस्ट वांटेड टू चेक, समटाइम इट इज गुड टू चेक लोगों का फोकस कैसा है, कितने अटेंटिव है. इट्स लाइक क्लास गोइंग ऑन, चीना की क्लास. एंड आई कैन सी दैट काफी लोगों ने मुझे ही मिर्ची भेज दी है और काफी लोगों ने बोला हाँ हमें मिर्ची पसंद है. सो डेफिनेटली आप सुन रहे हैं, कभी कभी ये भी जानना जरूरी है. यस कभी कभी थोड़ा बहुत फन कर लेना चाहिए. बट आई सी लॉट ऑफ पीपल यू नो आर रिक्वेस्टिंग कि कुछ और, मतलब इतने प्यारे गाने आप बजा रहे हैं तो कुछ डिफरेंट भी चाहिए. तो डिफरेंट आएगा आएगा, वेट करिए. लाइफ में इतनी आसानी से चीजें नहीं मिलती हैं. एंड इस सेक्शन की खास बात यह है, वी गोना रिवाइव द ओल्ड मेमोरीज. कि जैसे कि कोई एक मूवी थी जो इसी दिन आई थी एंड बिकेम अ सुपर डुपर हिट, चाहे सुपर डुपर हिट हुई यू नो, लेकिन आर्टिस्ट ने अपनी पूरी जान लगाई थी. पर जो मूवी आज आई थी उनके तो आर्टिस्ट की भी क्या बात करें, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की क्या बात करें, यू नो इट वॉज ऑल अ सुपर डुपर हिट. और आज ही के दिन 20th of June को बहुत ही खूबसूरत सी मूवी रिलीज हुई थी जो थी जाबास. क्या इस मूवी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो. बट या ऑफ कोर्स वी गोना टॉक अबाउट इट, बिकॉज इसके मैं दो गाने आपको दूंगी एंड मेजॉरिटी विल विन. या तो हम बेसिकली प्ले कर सकते हैं तेरा साथ है कितना प्यारा, और एल्स आई कैन ऑल्सो थिंक अबाउट प्लेइंग प्यार दो प्यार लो. आई लेट यू डिसाइड. आज आप लोगों की चलेगी, जिसकी वोटिंग सबसे ज्यादा होगी हम वही गाना प्ले करेंगे. सो फटाफट भेजिए मैसेज मुझे. एंड जाबास बेसिकली दरिया दिल कह दूं, 1986 में आई थी ये मूवी. एंड वी ऑल नो अबाउट अनिल कपूर, डिंपल कपाड़िया, ऊ ला ला, एंड प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय वन एंड ओनली फिरोज खान. और इसमें श्रीदेवी का भी बहुत खूबसूरत सा गाना था, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में. ये तो वैसे सच्ची है, इसमें कोई शक नहीं है. मिल जाए तो उसको संभाल के रखिए, बस इतनी ही एडवाइस है. दिस इज शीन ऑन लाइक अ गर्ल.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 124.01 Indian rupees. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June. And be in a win to win £75 voucher har roz, every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: And yes, talking about the FIFA World Cup 2026 today, it's about Netherlands versus Sweden. And yes, the score is 1-0. Quite interesting one, isn't it? Goal ho bhi gaya, yes. Goal Brian Robbery gives the Netherlands a 1-0 lead. So we'll keep you posted about the scores.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Rita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautiful.

0: Chappa Chappa Charkha Chale. From the movie Marches, and the artist of the week is none other than Hariharan. And this song is an amalgamation jisme Hariharan aur Suresh Wadekar ka combination hai. जो कि बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है. एंड सो इज द गाना. बेसिकली इस गाने में एक रूह है जो आप ढूंढते हैं कि चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी. तो बेसिकली इट इज ऑल टॉकिंग अबाउट कि जब आप घर से बाहर होते हैं एंड हाउ यू मिस योर फैमिली, यू मिस योर पार्टनर, यू मिस योर मॉम. एंड यही गाने को ऐसे दर्शाएगा. और हरिहरन के कितने सारे गाने हैं, मतलब जितने भी प्ले करे जाए, यू नो दिस इज नेवर एंडिंग लिस्ट. सो दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट टू बिकॉज इट्स अ वेरी मीनिंगफुल एंड डीप गाना. एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज द गाना स्पॉन्सर्ड बाय डेरी लिली, बट दिस इज द गाना यू गाइस पिक्ड. हाँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, आपने जाबाज का ये गाना पिक किया. सो लेट्स प्ले इट. लेट्स सी किसने मेजॉरिटी के साथ क्या गाना आप लोगों ने चूज किया है.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

फ्रॉम द मूवी पड़ोसन मेरे सामने वाली खिड़की में, बट आजकल तो यू नो इट्स नॉट पॉसिबल स्पेशली इन यूके राइट. आपकी सारी जो विंडोज हैं वो डबल ग्लेज्ड होती हैं, ट्रिपल ग्लेज्ड होती हैं, तो ये मौका मिल ही नहीं सकता राइट. Am I right? Holiday breaks are brought to you by Southall Travel. So yes, Anji, make this summer memorable with the Southall Travel. Explore beach breaks, city escapes and more with holiday deals that includes flights, hotels and all protection. Aur kya chahiye? Trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Visit Southall Travel or simply call them on 0208-574-8410.

0: listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। Available on Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
4: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
0: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Sonia.
5: On Leica Radio.

0: एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने ZTV HD पर।
1: Listen back to your favorite shows by logging on to LikeARadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Next, the biggest Asian love songs with Love Sound on Leica Radio Midlands.

0: ये है
1: Laika Radio.
2: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: 105 shows pura karya pachi, have lesser ma avi rahyu che, ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
12: Jay's Entertainment, line avi rahya che, sakhna re jo husband ji.
11: Leena Shah ane Samir Shah saate, hasiyano full dose. 28 June, People's Center, Leicester ma, besh शानदार शोज बपोरे 8:30 वागे अने सांजे 7 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk. सकना रे जो हस्बैंड जी.
13: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहां मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे साइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरू से मंगवाओ. कॉल कीजिए 01163325100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहां हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
14: बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स नॉनस्टॉप.

0: है लाइका रेडियो. लोकेशन लोकेशन लोकेशन
1: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
0: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
1: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
0: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
1: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
0: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
1: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
0: High appreciation.
1: In Dubai.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
3: गारंटेड.
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
3: फोन 02085748410.
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions. Especially on country roads, where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
5: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. The sounds of love across the Midlands. The Love Sound. This is Leica Radio.